सदा संभालिए। जित किता पाए अपना सा काल बुरी क्यों कालिए। मंदा मूल ना कीची दे लंबी नजर निहालिए। जो साहिब नाल नहारिए ते वे हापा सा टालिए। किछलाए ऊपर कालिए, किछलाए ऊपर कालिए।

लगे चाकरी जे चले कसमे पाए, गुरमत की सुनो अगले ओ वजो पे दुना खाए, कसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए, वजो गवाए अगला मोहि मोह पाना खाए, जिसदा दिता खावना तिस कहिए साबास, नानक हुकुम ना चले।

आपे भांडे साजना पे पूर्ण दे, एक ने दुध समाई एक चुले रैन चढ़े, एक ने हाली पैसवन को परैन खड़े।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुरप्रसाद चक्र चहन अर वरन जात अर पात नहिन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत के अचल मूरत अनपौ प्रकाश अमित तोज कहिज कोट इंद्र इंद्राण साहि सहान गणिज त्रिपवन महीप सोर नार असुर नेत नेत बान त्रिण कहत त्वय सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत जग और ना यहे महातम मैं अवतारे उजागरे आन कियौ तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुरा जिने अमृत नाम पियौ एह पद्धत ते मत चूक है रे मान भेद विभेद ना जान बियाओ पर तछ हृदय गुर अर्जुन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियाओ। सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हाँ फिराओ खोजंतिया तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक पोरी दर्शन दीजै नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे एक तिल पीना तीरीजै प्रभ स्यो मन लीना ज्यो जल मीना चात्रिक जिवैत संतिया जन नानक गुर पूरा पाया सगली तिखा बुझंतिया सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर सोबा चिंता लाहे हमारी एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम आपने तन मन हुए निहाल जा गुर देखा सामने सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुवाए दर्शन परसै गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अर सहो कुर सहो चटिया तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते सा हो
ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹੁ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਿ ਸਾਹੁ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹੁ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ ਸਤਿ

सलोकं राजकपटं रूपकपटं तानकपटं कोलगर्भतः संचन्त विखेयाच्छलं छिद्रं नानक बेनहार संग न चालते राजकपटं रूपकपटं तान कपटं कोल गर्भत है संचन्त विखेया छलं छिद्रं नानक बेनहार संग न चालते पेखंदड़ों की भुल तुम्मा दिसम सोहना अड ना लहंदड़ मुला

सो के ओ संजियां तिस का कहो क्या जतना जिस ते वंजियां हार बिसरे के ओ त्रिपतावां ना मन रंजियां प्रभु छोड़ आन लागा नरक समंजियां हो कृपाल दयाल नानक पाओ पंजियां प्रभु छोड़ आन लागा नर

रंग प्रंग नेक न जपन करत बाजियां अंदर जियो सब कुछ जान ला सब किस तेरे वास तेरा कर पला तेरे खर नंद वदाई तुद खर मान महता तेज अपना आप जर।

सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाए।

गुरु रामदास राखो शरणाई, गुरु रामदास राखो शरणाई। निमाणियों के मां निताणियों के तां,

पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुधाई दाया खेले सगल जगत चंगी आईया बुरी आईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर जिनी नाम ती आया गए मसकत का नानक ते मुखी उजले केती।

खेले सगल जगत। चंगियाँ बुरियाँ वाच धर्म हदूर, करमी आपू अपनी के नेड़े के दूर। जिनी नाम त्याया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

राग आसा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगम अगम अपार। सब त्याव है सब त्याव है तुध जी, हर सच्चे सिरजनहार। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातार। हर त्याव हो संत हो जी, सब दुख विसारन हार। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचार। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समान। एक दाते एक भेखारी जी, सब तेरे चोज विडाण। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर ना जान। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाण। जो सेवह जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुरवाण। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी। से मुक्त भय जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जी, तिन का भौ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंत। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनक अनेक अनंत। तेरी अनक करह हर पूजा जी, तप तप है जप है बेअंत। तेरे अनेक पढ़ह बहु सिमरत शास्त्र जी, कर किरिया खट कर्म करंत। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंत। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निःचल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करहै सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जान होई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैडा साई, जो तो भावै सोई थीसी। जो तू देहे सोई हों पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनों कृपा करहै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, बिजोग मिल बिछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना एह सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाण। जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखह जानह सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तेत सरवरड़ भई ले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया। पंक जो मोह पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबियले। मन एक न चेत समूढ़ मन, हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरिया।
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤਿਰ ਕਿਤ ਨ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰਾਮ।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपई। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपार। हमरे दुष्ट सवै तुम काव हो, आप हाथ दे मोहे बचाव हो। सुखी वसै मोरो परिवार, सेवक सिख सवै करतार। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संघरिए। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवरना त्याऊँ, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊँ। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उवरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हो जो सदा हमारे पच्छा, सिरियस तुझ जो करिय हो रक्षा। राख लिहो मोहे राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिवजू अवतर। काल पाए कर विसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जक्षण उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मो बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपार। जब आ करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते वदन श्रेष्ठ सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसार। एक रूप अनूप स्वरूप, रंक भयो राव कही भूप। आंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर अकैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचंपव, आदि जुगाद स्वरूप सुजंपव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दोस्त जीते उठवाते उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तब शरणी परे, तिनके दोस्त दुखत हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह आय है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल।
कृपा दृष्ट तन जाहि निहार हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शह स्व सक न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहि उबार। जे

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहें हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती मन बजियां बधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां, शब्दो ता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, ये मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारण। अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारण, सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मनहु बसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाहीं घर तेरे, घर तां तेरे सब किश है जिस देहे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं घर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दियाँ इह वडियाइया। कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। बाजे पंच शब्द तित घर सभागै, घर सभागै शब्द बाजे कला जित घर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंट कमारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे, आनंद सुनहो बड़ भागी हो।

चारों अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब साधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर तारो ताम सं

ज्यों जन हो त्यों राख, हर प्रभ तिरिया, केते गनो असंख अवगण मिरिया। असंख अवगण खति फिरे, नेत परत सद भूलिए, मोह मगन बेकराल माया, तो पर सादी कुलिए। लोक करत बेकार बिखड़ी, प्रभ नेर हूँ ते नेरिया। बिनवंत नानक दया तार हो, काड पव जल फिरिया। असी खते बहुत कमाव दे, अंत न पारावार। हर कृपा करके बख्श लै हो, हों पापी बड़ गुन है गार। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, परतख गुरु निसतारे। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। दर्शन प्यासी दिन सरात, चित बहु आनंद ननीत। खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। सुख टल गुर सेविए, एहन ससहज सुभाय। दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटी। तुद दिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी। सजन सचा पातशाह, सिर सहांद जिस पास बैठिया सोही, सबना दा विसाह। सजन सचा पातशाह, सिर सहांद

भीख कर निर्बन जतन कर मानुख डहकावे ओह अंतर जामी जाने पाप करे कर मुकर पावे भीख कर निर्बन जानत दूर तुम है प्रभ नीर ओत ताक ओत ते ओत पीख आवे लोभी फेर रहा।

हम अब गुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राख हो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राख हो सरनाई। सो कह टल गुर सेविया, अहनस सहज दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख होवै सिफत खसम दीन। ऊर अरसह कुरसह तुद डिठे सच्चे पात सह, मल जन्म जन्म दी सजन सच्चा पात साह। सिर सहांद जिस पास बैठिया, सोही सब नांद सजन सच्चा पात साह। सिर सहांद जिस पास

संत जनाब मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर

ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवै अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद। आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे

थोड़ी आपी ने आप साजियो आपी ने चो ना हो तो इनकी साजी है करा संजिठो चाओ दाता करता आप तू तुझ देवे करे पसाओ तू जानो ही सबसे दिले से जित कुबा करा संजिठो चाओ करा

0: पड़ पड़ गड्डी लदी है, पड़ पड़ पड़िए सार, पड़ पड़ बेड़ी पाइए, पड़ पड़ गड्डिए खास, पड़िए जेते बरस बरस, पड़िए जेते मास, पड़िए जेते यार जा, पड़िए जेते सास। नानक लेखे एक गल और हो मैं चकना चाक महला पहला।
1: लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया, बहु तीर्थ भव्या ते तोलव्या, बहु भेख किया देही दुख दिया, शौह विदिया अपना किया, अन ना खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा पाया, वस्त्र ना पहरे अहनस कहरे।

0: जात में जोत, जोत में जाता, कलकला भरपूर है। तू सच्चा साहिब सिरस वाले हो, जिनकी तीसो पार पया, कहो नानक करते किया बाता, जो किछ करना सो कर रहे महला दूजा।
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जे कव जाने पे, नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा। एक कृष्णं सर्व देवा देव देवाता आत्मा, आत्मा वासुदेव सहजे कौ जाने पे, ओ नानक ताका दास है सोई निरंजन।

0: जाके दृष्टा चल ठान बिमल बुद्ध स्थान पहर सील सनहो सकत बेदार कहो कीरत कल सहार सपत दीप मजार लहना जगतर गोर पर समरार दृष्ट धरत तम हरण दहने अग पाप पर नासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध बिनासन लोभ मोह वश करण शरण जाचक प्रत पालन आत्मरत संग रहन कहन अमृत कल ढालन सतगुरु कल सतगुर तिलक सत लागे सो पै तरै गुर जगत फिर नसी अंगरों राज जोग लहना करै।
1: सदा अकल लिव रहै करण शिक्षा चारै दुर्म स्पूर जो निवै खवे कस विमल विचारै एह तत् जान्यो सर्वगत लख बिडाणी सहज भय संचयो किरन मत कल बाणी गुरगम प्रमाण तै पायो सत संतोख सहज लयो गुर परस्यो हर्ष मुलवे जन दर्शन लेना पयो मन विसास पायो गहर गोदर दियो गर नास्ता नठ्यो अमे अंतर्गत पियो रिद विगास जाग्यो लख कल तरी जुगंतर सतगुरु सहज समाद रवयो समान निरंतर उधारो चेत दारि दहरण बिखंते कल मातरसन सद रंग सहज कल उचरै जस जंप लहन रसन।
2: नाम अख नाम आधार अर नाम समाध सुख सदा नाम निशान सोहै रंग रत्तो नाम स्यो कल नाम सुर नरै बोहै नाम परस

अमै दृष्टि शुभ कर हरे अग पाप सकल मल, काम क्रोध और लोभ मोह वस कर सब बल, सदा सुख मन वसा दुख संसार खोवे, गौर नवनिध दरियाओ।

0: तोहे बन आवे।
1: गुर ज्ञान और ध्यान तत्स्यों तत् मिलावे, सच सच जानिए इक चित लिवलावे। काम क्रोध वस करे पवन उडंत न तावे, निरंकार कै वसै देश हुकम बुझ।

पाप कर कर मुकर पावे पेख कर निर्वाण जतन कर मानुख डहकावे ओहो अंतर जामी जान पाप करे कर मुकर पावे पेख कर निर्वाण जानत दूर तुम्हें प्रभ नेरा।

जब लग तुटा नाही मन परमा, तब लग मुक्त ना कोई, कहो नानक दयाल स्वामी, संत भगत जन सोई। जब लग तुटा नाही मन परमा, तब लग मुक्त ना कोई, कहो नानक दयाल स्वामी।

साहिब होए दयाल कृपा करे ता साहिकार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसने हुक्म मनाए सी हुक्म मन्या होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे भावे सो करे मनु चलिया सो फल पाए सी ता दरगह पैंदा जाए सी ता दरगह पैंदा जाए।

आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचे रियायत, देग तेग फतहे बिरद की पैज, पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोलबाले बलो जीवा गुरु।

0: गोबरतर न जाय तो ती टिका तय जब माली तान मलेसा खाए अंतर पूजा पणिक दे संजम तुरका भाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाय तरंदा महला पहला
1: मानस खाने करहने वा छुरी वगाय तिन गलताग तिन कर ब्राह्मण।

0: जे मोहा का कर मोहे कर मोहे पितरी दे अगे वसे आणिए पितरी चोर करे वडिए हाथ दा लाल के मुसफिए करे नानक अगे सो मिले जे खटे काले दे महला पहला
1: ज्यों जोरु सिरनावनी आवे बारो बार झूठ है जूठा मुख वसै नित नित होए खुआर सुचे एह न आखिए बहन जे पिंडा धोए सुचे सेई नानका जिन मन वसिया सोए।